जिंदगी में जागना ही है तो हर दिन उम्मीद के साथ ही जागिए। जिंदगी में जागना ही है तो हर दिन उम्मीद के साथ ही जागिए। निराशा के साथ जागे तो पूरा दिन निराश ही रह जाएंगे। उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, कभी न कभी सफल जरूर हो जाएंगे। 5:36 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

सिर्फ काटना ही है मकसद तुम्हारा तो कैसे भी कट जाएगी ये जिंदगी। सिर्फ काटना ही है मकसद तुम्हारा तो कैसे भी कट जाएगी ये जिंदगी। पर हम लोग यहाँ जिंदगी काटने नहीं, जिंदगी जीने आए हैं। 5:47 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं के समय पर सूचना देने को

0: प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha had already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET paper leak issue. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz Noor Olia that sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. In a statement, Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It said the Indian Embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Yemeni authorities for the safety and security of the crew. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. It said the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. The Ministry of External Affairs said the targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest.

दोस्तों, ट्रेन मूवी से आपने सुना वो गाना, वो अजनबी, और इस गाने से हमारे नमस्ते हेलो आदाब की हिंदी गानों की शुरुआत होती है। और ये गाना हमें याद दिलाता है कि किस तरह से इमरान हाशमी के सारे गाने सुपर डुपर हिट है। कोई भी उठा लो, कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो इमरान हाशमी की पिक्चर में हो और हिट ना हो। नमस्ते, हेलो आदाब, गुड मॉर्निंग हैदराबाद।

सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब शो का नाम भी आपको सबको हेलो आदाब नमस्ते भी बोल रही हूँ मैं, और सिर्फ 101.9 FM पर आपके साथ जुड़ते हैं हम लाइव। इसी चैनल पर आपका फेवरेट शो हाजिर है और सुबह का वक्त है, एक नया दिन हम सब के सामने खड़ा है बिल्कुल फ्रेश नोटबुक की तरह। अब इस नोटबुक में कंप्लेन लिखनी है या कुछ अच्छी बातें लिखनी है, अपनी अचीवमेंट लिखनी है, ये डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए आज का मंत्रा जो है वो सिंपल है कि छोटे छोटे स्टेप्स आपको बड़े सपनों तक ले जा सकते हैं, बस रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। अगर आपने ठान ली तो उस पर कायम रहना है। बस आज के दिन हम दो ऐसे लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट की। टाइम फॉर टुडेज बर्थडे मेंशंस। तो दोस्तों, सबसे पहले बर्थडे विशेस जाती है बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस काजोल को। काजोल की स्माइल, उनकी एनर्जी और उनकी नेचुरल एक्टिंग, क्या ही तारीफ करें उसकी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर कभी खुशी कभी गम, फना तक उन्होंने हमें बहुत सारे हिट्स दिए। काजोल को 101.9 FM रेनबो की तरफ से बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड हैप्पी बर्थडे। और अब बात उस इंसान की जिसका नाम सुनते ही आसमान भी थोड़ा और करीब लगने लगता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था और दुनिया के सामने वो कर दिखाया जो हमें लगता था कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो उनका सफ़र हमें याद दिलाता है कि सपने जितने बड़े हो उतना ही आपको स्ट्रांग होना पड़ता है अपने सपनों तक पहुंचने के लिए। सोचिए, एक तरफ सिल्वर स्क्रीन की सुपरस्टार, दूसरी तरफ मून पर चलने वाला एक्सप्लोरर। दोनों की जर्नी अलग थी लेकिन एक चीज़ कॉमन, विच इज़ ऑफकोर्स दे शेयर देयर बर्थडेज टुडे, एंड कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस अपने कला में, उनकी निष्ठा और उनकी मेहनत जो दिखाई देती है। और शायद आज की सुबह हमें भी वही मैसेज दे रही है कि अपनी लाइफ का हीरो या हीरोइन बनने के लिए, अपने खुद के मून मिशन पर निकलने के लिए परफेक्ट टाइम का वेट मत कीजिए। आज का दिन ही परफेक्ट है, बस शुरू हो जाइए, आगे बढ़िए। और अगर आज आप ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू या एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बस एक बात याद रखिए कि आज की जो एफर्ट है ना, वो कहीं ना कहीं कल रंग लाएंगी, कल की स्टोरी बन सकती है। तो चलिए, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ, इसी म्यूजिकल नोट पर थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ाते हैं, अगले गाने की तरफ रुख मोड़ते हैं और सुबह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। आप सुनते रहिए नमस्ते हेलो आदाब सिर्फ और सिर्फ 101.9 FM पर, और मैं आरजे पर्ल बने रहूंगी यही स्टूडियो पर आपके साथ नगमे और प्यारी सी गपशप लेकर।

दोस्तों, बैंग बैंग मूवी से आपने सुना वो गाना, गाने का नाम तू मेरी। और नमस्ते, हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून हैदराबाद। आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब सिर्फ 101.9 FM रेनबो पर। वेल, आफ्टरनून तो हो ही चुकी है, ऑलमोस्ट 12 बजने ही वाले हैं, आधा घंटा बचा है, तो मैंने सोचा आफ्टरनून ही बोल दूँ क्योंकि मॉर्निंग का आधा घंटा बचा है। बट हमारे शो में बहुत सारा वक्त बचा है, बहुत सारे प्यारे गाने जो आपकी तरफ आएंगे, बहुत सारी अच्छी गपशप होगी, आपका फेवरेट हेलो रेनबो शो भी शुरू होगा 1 से 2 के बीच में। उसके पहले आपको ये बता दूँ कि दोपहर का वक्त जो होगा, लंच होगा, एनर्जी थोड़ी स्लो होगी आपकी आने वाले 1-2 घंटे में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी जोश एनर्जी की ज़रूरत है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गाने होंगे, तो इसी चैनल पर बने रहिएगा। और सबसे पहले चलते हैं साल 1914 में, क्योंकि हम चलेंगे हिस्ट्री को दोबारा दोहराने और हिस्ट्री के दो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट्स की तरफ अपना थोड़ा सा ध्यान बटाने। तो सबसे पहले 1914, जैसे मैंने कहा, आज ही के दिन दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट सिस्टम इंस्टॉल किया गया था। जी हाँ, सोचिए, उस ज़माने में जब शायद गाड़ियाँ भी कम होती थी रोड्स पर, इफ़ आई कैन इमेजिन, और लेकिन लोगों के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करना ज़रूरी था। और आज इमेजिन हैदराबाद की रोड्स देखकर लगता है कि जिस भी इंसान ने ट्रैफिक लाइट बनाई थी, इन्वेंट की थी, उसको एक बहुत ही वर्चुअल बड़ा सा थैंक यू तो बनता ही है। और रेड का मतलब रुकना, ग्रीन का मतलब चलना, येलो का मतलब सोच समझ कर डिसीजन लेना। वैसे सिर्फ ट्रैफिक में ही नहीं, लाइफ में भी ये 3 सिग्नल्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब थोड़ा पेशेंस रखना है, ये जान लो तो फिर बस क्या ही बात है। और अब दूसरी कहानी और भी ज़्यादा ड्रामेटिक है। साल 1926 में इसी के दिन, आज ही के दिन, जादूगर हैरी हुडीनी ने अपना फेमस अंडरवाटर एस्केप परफॉर्म किया था आज के दिन, और उन्हें पानी के अंदर बंद किया गया था। फिर उन्होंने वहाँ से एस्केप कर लिया और दुनिया को सरप्राइज कर दिया। और ये ऐसे वाला मैजिक ट्रिक आज तक कभी किसी ने रेप्लिकेट नहीं किया है उनकी स्टाइल में जो हुआ था। तो उनकी ये मैजिक ट्रिक हिस्टोरिकल तब बन गई जब उनके करेज और कॉन्फिडेंस का एग्जाम्पल जो है सारे मैजिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड लेने लगे। और कभी कभी लाइफ में भी हमें ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन हुडीनी की स्टोरी याद दिलाती है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई एस्केप रूट, कोई ना कोई इलाज तो होता ही है, बस दिमाग शांत रखना पड़ता है और हिम्मत को नहीं छोड़ना है हमें। और आज की दोपहर जस्ट अ टेक अवे सिंपल वन, ट्रैफिक लाइट की तरह अपनी लाइफ के सिग्नल्स को समझिए, अपने मुश्किल सिचुएशन से निकलने का कॉन्फिडेंस रखिए। और दोस्तों,

एक क्वेश्चन भी अपने दिमाग को अगर आप दौड़ाना चाहते हैं तो सोच सकते हैं कि अगर आप टाइम मशीन में बैठकर किसी हिस्टोरिकल इवेंट या किसी यू नो कोई ऐसे इंसिडेंट या फेज में जाना चाहते हो बैक इन टाइम, तो क्या देखना पसंद करोगे आप? पहला ट्रैफिक लाइट जलते हुए, या वही वाला अंडर वाटर एस्केप, या फिर कोई हिस्टोरिकल मोमेंट जिसका हिस्सा आप यू नो कहीं ना कहीं आपके दिल में कभी कभी आता है कि काश मैं उस वक्त वहाँ होता। सोचिए और मुस्कराइए, क्योंकि हिस्ट्री किताबों में तो होती ही है। रोज़ हम सब अपनी छोटी छोटी हिस्ट्री भी क्रिएट कर रहे होते, आपका आज जो है वो कल हिस्ट्री बन जाएगा। ये सोच के साथ आज फिलहाल आगे बढ़ते हैं गानों की तरफ, और सुनते रहिए नमस्ते हेलो आदाब सिर्फ और सिर्फ 101.9 FM पर मेरे यानी आरजे पर्ल के साथ। कहीं मत जाइए, दोपहर शुरू होने वाली है, सुबह बस ख़त्म होने पर है। बने रहिए आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो चैनल पर। यहीं पर अगला गाना आपके लिए दोस्ताना मूवी से ये रहा।

शुद्ध देसी रोमांस का टाइटल ट्रैक। हेलो हैदराबाद, नमस्ते, हेलो आदाब, सिर्फ और सिर्फ 101.9 एफएम पर सुन रहे हो आप मेरी आरजे पर्ल के साथ। और ये वक्त थोड़ा रिलैक्स्ड होता है ना, काम के बीच का ब्रेक, थोड़ा सा घर के रूटीन का एक पॉज, और ऐसी परफेक्ट मूड

चाहिए होती है कुछ खास बात करने के लिए। और एक ऐसे महीने में हम एंटर हो चुके हैं, इंडिया के दिल के बहुत करीब होता है ये महीना, अगस्त का महीना। दोस्तों 5 days into this beautiful month, अगस्त जो है ना वो इमोशंस का महीना है। इस महीने में भाई बहन की यादें, बारिश की खुशबू, मिठाई की मिठास और तिरंगे की शान भी है। सबसे पहले बात करते हैं वर्षा ऋतु की। बारिश का मौसम अपने साथ कितनी सारी छोटी छोटी खुशियां लेकर आता है। गर्म चाय, पकोड़े, भुट्टा, खिड़की के बाहर गिरती बूंदे, और वो एक अजीब सी सुकून वाली फीलिंग जो सिर्फ बारिश ही हमें दे सकती है। हैदराबाद में तो बारिश का अपना ही स्वैग होता है, कब आएगी कब चली जाएगी किसी को पता नहीं होता। प्रेडिक्शंस कुछ और होते हैं और असल में कुछ और होता है। जब हम सोच के घर से निकलते हैं कि बारिश नहीं होगी, तब बारिश हो जाती है, और जब घर पर बारिश अवॉइड करने को रहते हैं तब बारिश नहीं होती, हमारा दिन वेस्ट हो जाता है। वैसी वाली फीलिंग आती रहती है इस सीज़न। फिर आता है रक्षाबंधन, भाई बहन की नोकझोंक, राखी बांधने के बाद गिफ्ट्स की नेगोशिएशन, और बचपन की वो मेमोरीज जब राखी से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट जो पैसे मिलने वाले होते हैं या मिठाइयाँ या चॉकलेट्स मिलने वाली होती है उस पर होती थी फोकस। और आज भी चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, राखी के दिन दिल पिघल ही जाता है, बचपन की याद आ ही जाती है, और हमारे भाई बहन से हम थोड़े और करीब महसूस करते हैं। और फिर आता है वो दिन जो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का दिन होता है, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्र दिवस। तिरंगा जब हवा में लहराता है तो दिल भी खुद ब खुद गर्व महसूस करता है। स्कूल के परेड याद आते हैं, नेशनल एंथम याद आता है, और वो फीलिंग कि हम एक आज़ाद देश के नागरिक है, दैट फीलिंग इज ट्रूली अमेजिंग। अगस्त हमें एक ही महीने में नेचर भी काफ़ी सरप्राइजेस देता है। अगस्त के महीने में फेस्टिवल्स कई सारे देश के कई मायने होते हैं, कई कोने में हार्वेस्ट मंथ होता है अगस्त का महीना। तो ऑन दैट नोट आज एक छोटा सा थॉट कि बारिश की तरह फ्रेश रहिए, राखी की तरह रिश्तों को संभाल के रखिए, और तिरंगे की तरह हमेशा अपनी पहचान पर गर्व कीजिए। और सुनते रहिए ये शो, नमस्ते हेलो आदाब। 101.9 FM रेनबो है चैनल का नाम, मेरा नाम पर्ल। कहीं मत जाइएगा, अगस्त की वाइब्स और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ इसी खूबसूरत चैनल पर।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
3: ओहो
4: दोनों डील करा से
0: टाइट वेरी टाइट।

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है.
2: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है. श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है. रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है. लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण

0: दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। Honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
0: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, आवारापन मूवी से आपने सुना वो गाना तेरा मेरा रिश्ता, और हाँ, आवारापन 2 भी आने वाली है, तो उसके लिए एवरीवन, स्पेशली ऑल ऑफ बॉलीवुड फैंस आर एक्साइटेड. गुड आफ्टरनून हैदराबाद, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, सिर्फ 101.9 एफएम रेनबो पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे पर्ल. बारिश का मौसम और हैदराबाद, ये कॉम्बिनेशन वैसे ही परफेक्ट है जैसे अपनी चाय की प्याली और समोसा उसके साथ.

या फिर अगर आपको उसके साथ खारी खाना पसंद है या कोई कुछ भी और, लेकिन चाय के साथ किसी भी नमकीन का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। इसी तरह दोपहर के इस रिलैक्स्ड मूड में चलिए बात करते हैं हैदराबाद के कुछ ऐसे प्लेसेस की जो रेनी सीजन में और भी खूबसूरत हो जाते हैं। सबसे पहला नाम आता है हुसैन सागर लेक का। जब हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, लेक के पास ठंडी हवा चल रही होती है, पूरा मूड सिनेमैटिक सा हो जाता है। नेकलेस रोड पर एक वॉक और गर्म चाय का कप हाथ में, बस फिर कोई बोरिंग सा मंडे हो या यू नो आज जैसा कोई मिड वीक वाला दिन वेनसडे हो, हर दिन प्यारा सा लगने लगता है, ठीक फ्राइडे शाम की तरह। और दूसरी जगह है टैंक बंड। बारिश के टाइम पे टैंक बंड का व्यू और भी शानदार हो जाता है। बुद्धा स्टैचू का रिफ्लेक्शन पानी में देखना सच में बहुत सुकून देता है। और यहाँ शाम का टाइम स्पेशली बहुत ही ब्यूटिफुल हो जाता है, बिकॉज रेनी सीजन में आसमान जो है वो बहुत कलरफुल दिखता है। और अगर आप नेचर लवर है तो KBR नेशनल पार्क भी रेनी सीजन में मस्ट विजिट है दोस्तों। हरियाली और फ्रेश हवा दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा लगता है जैसे सिटी के बीच में छोटा सा एक हमें नेचर एस्केप मिल गया हो। और अगर थोड़ा रॉयल फील चाहिए तो गोलकोंडा फोर्ट चले जाइए। बारिश के बाद पुराने पत्थर और फोर्ट की दीवारें और भी मजेस्टिक लगती है। और ऊपर तक चढ़ने के बाद जो व्यू मिलता है उसके लिए थोड़ी मेहनत बिल्कुल वर्दी होती है। और आई एम श्योर जब आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार हैदराबाद आते हैं तो आप उनको घुमाने गोलकोंडा ज़रूर ले जाते होंगे, शाम का लाइट एंड साउंड शो भी दिखाते होंगे। चार मीनार का ही अपना चार्म होता है। बारिश के वक्त पुरानी हैदराबाद की गलियां और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगती है। ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट तो बनता ही है, और उसी के साथ साथ बारिश की खुशबू, ये कॉम्बो जो है ना किसी भी हैदराबादी को इंस्टेंटली हैप्पी कर सकता है। हम हमेशा चाय और बिस्किट के दीवाने तो रहे ही हैं, लेकिन बारिश के मौसम में चाय और बिस्किट खाने का मज़ा इट्स लाइक another level. For that matter, even a non-Hyderabadi will love it, है ना? और अगर आपको थोड़ा drive करना पसंद है, तो गंडीपेट के side का road भी rainy season में बहुत प्यारा लगता है. Clouds, greenery और road trip वाली feeling आ जाती है. It's just amazing. वैसे हैदराबाद की बारिश का एक rule है कि you know, जब अम्ब्रेला लेकर निकलो तो बारिश नहीं होगी, अम्ब्रेला घर पर छोड़ दो तो बारिश होगी। इसीलिए स्मार्ट हैदराबादी हमेशा वेदर को चैलेंज नहीं करता, हर वक्त तैयार रहता है, अपने रेनकोट यू नो अम्ब्रेला हमेशा अपने साथ रखता है। और आज दोपहर का फन क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हो कि हैदराबाद में बारिश होते ही आप सबसे पहले किस जगह का दौरा लगाते हो, किस जगह का प्लान बनाते हो। वो हुसैन सागर हो सकता है, चार मीनार हो सकता है, गोलकोंडा, नेकलेस रोड, या फिर सीधा किसी कैफ़े चले जाते हो कि फिर किसी रेस्टोरेंट चले जाते हो। जो भी हो, इस रेनी सीज़न में थोड़ा वक्त खुद के लिए ज़रूर निकालिए। बारिश सिर्फ भीगने के लिए नहीं, कभी कभी थोड़ा स्लो डाउन होने के लिए भी होती है, सुकून के लिए भी होती है। अपने ही घर के विंडो से जो नज़ारा दिखता है उसे अप्रिशिएट करने के लिए होती है। भीगे पेड़ पत्ते, भीगी ज़मीन, ठंडी ठंडी हवा, यू नो ऑल्सो विथ सम हॉट मैगी इनडोर्स, ये तो बेस्ट फीलिंग है ऑब्वियसली। और बेस्ट फीलिंग्स की बात करें तो ऑफकोर्स ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी हैदराबाद का FM रेनबो चैनल ऑलवेज गिव्स यू द बेस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल फीलिंग्स। फिलहाल आप ट्यून्ड इन हो नमस्ते हेलो आदाब शो पर सिर्फ 101.9 FM पर मेरे RJ पर्ल के साथ। लाई हूँ आपके लिए प्यारी प्यारी गपशप और ढेर सारा प्यारा प्लेलिस्ट जिसमें प्यारे प्यारे गाने हैं। सो आई हैव गॉट दिस sorted for you. All you have to do is stay tuned, stay enchanted, और I hope आपको पसंद आ रहा हो ये नगमे, ये गाने जो मैं बजा रही हूँ, and I hope it's keeping you happy and active. Here's the next song, ये गाना कुली नंबर वन मूवी से।

दोस्तों, दोपहर का वक्त 12:50। नमस्ते, हेलो, आदाब है शो का नाम। आप सुन रहे हैं इस शो को लाइव 101.9 एफएम रेनबो की फ्रीक्वेंसी पर, साथ ही साथ हमारे न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी लाइव सुन सकते हो आप हमें। ऐप के थ्रू यू कैन हियर अस ऑल ओवर द ग्लोब। इज़न दैट ट्रूली अमेजिंग। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2 अगस्त को ख़त्म हुए, ओ माई गॉड, क्या ही बात करें उसकी। इट वॉज ट्रूली अमेजिंग हाउ वी एज अ कंट्री परफॉर्म दिस ईयर। कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में हुए और अगले कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे देश में अहमदाबाद में होंगे। और दोस्तों, जब भी इंडियन एथलीट्स या इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स इंटरनेशनल स्टेज पर उतरते हैं, उनकी मेहनत और डिसिप्लिन साफ साफ दिखाई देती है और पूरे देश की उम्मीद उन पर टिकी होती है। ग्लासगो 2026 में इंडिया ने कई इवेंट्स में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। वेट लिफ्टिंग में हो, इंडियन लिफ्टर्स ने अपनी ताकत और टेक्निक का कमाल दिखाया। रेसलिंग में हमारे पहलवानों ने एक बार फिर स्ट्रॉन्ग चैलेंज दिया दुनिया भर के रेसलर्स को। बैडमिंटन, टेबल टेनिस दोनों में प्लेयर्स की स्पीड, उनके फोकस, उनकी कॉन्फिडेंस की बहुत चर्चा हुई। और एथलेटिक्स में भी इंडिया के एथलीट्स ने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि हर मेडल के पीछे सालों की प्रैक्टिस, सुबह जल्दी उठना, हर दिन ट्रेनिंग करना, इंजरीज के बावजूद भी लड़ते रहना, गेम में अपना 100% देना और फिर भी गिव अप नहीं करना। इसीलिए जब तिरंगा पोडियम पर लहराता है ना, खास करके जब नेशनल एंथम इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे बजता है, तो वो सिर्फ एक एथलीट की जीत नहीं होती, वो पूरे भारत की जीत होती है। और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स हमें एक बहुत सिंपल लेसन देता है कि कंपैरिजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, रोज़ मेहनत, रोज़ थोड़ा बेटर बनना, वही असली प्रोग्रेस होती है। हम कई बार क्या करते हैं कि जोश में कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं और फिर बस यू नो इट जस्ट फिजल्स आउट और हम छोड़ देते हैं चीज़ों को। तो कोई भी चीज़ एक दिन में हासिल नहीं होती, रोज़ दिलो जान से मेहनत करनी होती है। और वैसे एक

और भी थॉट आता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते अगर आप, तो कौन से स्पोर्ट को चूज करते? क्या वो बैडमिंटन होता, एथलेटिक्स, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग या कोई और गेम? सोचिए और अपने अंदर के चैंपियन को छोटी सी स्माइल दीजिए, और अगर वो गेम आपने छोड़ दिया है खेलना, देन कंटिन्यू प्लेइंग इट, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ के किसी ना किसी इवेंट में कंपीट कर ही रहे होते हैं, और स्पोर्ट्स के इन शानदार स्टोरीज से हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। चलिए लौटते हैं अपनी प्लेलिस्ट पर, म्यूज़िक के साथ हम वापस जुड़ेंगे और दोपहर का और भी एनर्जेटिक माहौल बनाएंगे। ये रहा आपके लिए अगला गाना धूम ट्री मूवी से।

दोस्तों, रब ने बना दी जोड़ी मूवी से आपने सुना वो गाना हौले हौले, सुखविंदर सिंह की आवाज़। गुड आफ्टरनून हैदराबाद, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद के 101.9 FM रेनबो चैनल को, और ये शो लाइव है। स्टूडियो में मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे पर्ल आपके साथ, और अब वक्त हो गया है तुम्हारे, हमारे, हम सब के बहुत ही खास सेगमेंट हेलो रेनबो फ़ोन इन प्रोग्राम का। ये वो सेगमेंट है जहाँ कहानी आपकी होती है, आवाज़ आपकी होती है, और एहसास हम सबका होता है। आज का टॉपिक है आपके बचपन का दोस्त जिसको आप याद करते हो, पर अब वो आपके कांटेक्ट में नहीं है। सोचिए ज़रा, स्कूल की वो बेंच, गली क्रिकेट हो या लंच बॉक्स शेयर करना हो, होमवर्क कॉपी करना, बारिश में भीगना, और हो सकता है किसी की यादों में किसी रीज़न के बिना ही पूरा दिन साथ रहना। बचपन के जो वो दोस्त होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनके साथ ऐसी ही यादें जुड़ी होती है, और उनके साथ ना रिचार्ज का टेंशन होता था, ना ब्लू टिक का प्रेशर, बस एक आवाज़ और आपका दोस्त हमेशा रेडी टू प्ले विथ यू। फिर स्कूल ख़त्म हुआ या कॉलेज ख़त्म हुआ, और आप या फिर घर चेंज हो गया और आप अलग हो गए, किसी की जॉब दूसरे शहर में शायद लग गई, किसी की शादी हो गई, किसी का नंबर चेंज हो गया, और धीरे धीरे वो दोस्त यादों का हिस्सा बन गया। कभी कभी किसी गली से गुजरते वक्त, किसी पुराने गानों को सुनते वक्त, या किसी स्कूल रियूनियन की फ़ोटो देखते वक्त अचानक वो दोस्त याद आ जाता है, और दिल कहता है कि काश एक बार वो हमें फिर मिल जाते, काश एक बार फ़ोन आ सकता उनका। तो आज हम उन्हीं यादों को आवाज़ देने वाले हैं। हमें कॉल कीजिए और बताइए कि आपके बचपन का वो दोस्त कौन था या कौन थी, उसका नाम क्या था, कौन सी शरारत आज भी याद है आपको, और अगर आज वो इस प्रोग्राम को सुन रहे हो तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे। तो फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। आज हम सिर्फ यादें नहीं बांटेंगे, हम बचपन का एक वो हिस्सा फिर से जिएंगे जिसको हम भूलते गए हैं या जिसके कॉन्टैक्ट से हम दूर हो गए हैं। और ये हेलो रेनबो फ़ोन इन प्रोग्राम जो है सिर्फ और सिर्फ 101.9 FM पर आप तक पहुंच रहा है आपकी कहानियां सुनने के लिए। मैं आरजे पर्ल, चलिए सुनते हैं हैदराबाद की दिल से जुड़ी हुई कहानियां। स्टे विथ मी ऑन द शो, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी बातें होंगी। और जी हाँ, फ़ोन नंबर्स तो अनाउंस कर दूँ, 0402323-0030, 0402323-4821, या 0402970-4715। इनमें से किसी भी नंबर्स पर कॉल कीजिए, मेरे साथ जुड़ेंगे आप स्टूडियोज तक। आई रिपीट, 0402323-0030, 0402323-4821, या 0402970-4715।

0: तो दोस्तों हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: नमस्ते आरजे पॉल
0: नमस्ते नमस्ते सर, बताइए।
1: जी। हाँ जी हाँ, स्कूल के मेरे दोस्त है आबेद बोलकर, वो
0: अच्छा
1: उन्होंने ट्रैफिक पुलिस में इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं। मेरे स्कूल
0: अच्छा
1: के दोस्त है, बड़े
0: अच्छा
1: बेहतरीन स्कूल में मॉनिटर थे वो,
0: हाँ हाँ हाँ
1: और मैं स्कूल से जब उनके साथ रहता था।
0: हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो,
1: अरे
0: जी सर, जी सर, हाँ बताइए। शायद कोई टेक्निकल खराबी है, अगले कॉलर को ऑन एड लेते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, हाँ
1: गुड
0: सर,
1: आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून।
1: ऑनलाइन में मैडम,
0: जी
1: ऑनलाइन में मैडम।
0: जी जी जी आप ऑन एयर है, बताइए।
1: जी, ओम शांति, नमस्कार अंडी। ना पेर బోల్చెట్టి మెహర్ బాబా జూబ్లీహిల్స్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అండి।
0: जी जी जी
1: आप
0: सर,
1: देन बांधवा सर बोले, आप इंग्लिश हो, तेलुगु, हिंदी पूरा बात करते रहा था। 10 बजे से 2 बजे तक बात करते रहा था, बोल के देन बांधवा सर बोल के गए मैडम। हाँ,
0: जी सर, जी सर,
1: आपको पूछा, नाश्ता किया, सब कुछ पूछा, सब कुछ सुनते रहा था मैडम हम लोग को। नहीं,
0: जी जी जी सर, जी
1: एक
0: सर,
1: बोलते हैं, बचपन में अंडे मैं
0: हाँ
1: तेलुगु तेलुगु तेलुगु लड़का मैडम हूँ। आंध्र बिड्डन मैडम नहीं,
0: हाँ सर,
1: ठीक है, तेलुगु मैडम, मेरे तेलुगु इंग्लिश हिंदी फेमस मैडम।
0: हाँ सर, हाँ सर,
1: లేకపోతే మా రమణయ్య అన్నయ్య గారికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను మేడం। చిన్నప్పుడు మేడం నేను 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి వరకు మేడం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర హిందూ ఎయిడెడ్ ఎలిమెంటరీ పాఠశాలలో చదువుకున్నప్పుడు మేడం కోమట్ల అబ్బాయి చిరువెళ్ళ గణేష్ బాబు అని ఉండేవాడు।
0: हेलो,
1: वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून पर्ल
0: गुड
1: जी,
0: आफ्टरनून सर, बताइए।
1: श्रीनिवास राव मलक पेट माँ, कैसे
0: जी जी सर, जी सर, बताइए।
1: हैं? बहुत दिन के बाद आ रहे हैं आप,
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत अच्छा है। तो
0: जी
1: आपका टॉपिक भी आपके वैसे बहुत ही अच्छा है। तो
0: जी सर,
1: मैं स्कूल में जब हमारे मैं जो मलक पेट को आए हम लोग, हाँ नहीं, वी के में 1960,
0: जी सर, जस्ट
1: तो
0: सर,
1: जब
0: आपकी आवाज़
1: क्या
0: एको हो रही है, आप रेडियो
1: माँ,
0: से, आपकी आवाज़ एको हो रही है, आप
1: ओके
0: रेडियो से
1: ओके,
0: दूर
1: मैं
0: सर। जी
1: रेडियो बंद कर देता।
0: सर, जी सर,
1: तो 1960, ओके ना?
0: हाँ जी हाँ जी, बोलिए।
1: और तो हम 1960 में यहाँ मलकपेट को आए माँ, तो बाजू में मेरा घर का नंबर 18 है, वही वही लाइन में 22 SRT में और एक दोस्त रहता था, उन्हें मैं दोनों मिलके क्लास स्कूल को जाते थे, एक ही स्कूल में हम लोग 5 लोग मिलके 1962 to 65 तक एक ही क्लास में पढ़े मैडम। तो
0: अच्छा,
1: टिल द सेम थिंग फ्रेंडशिप इज देयर विथ अस नाउ। तो
0: बढ़िया बढ़िया।
1: उसमें से 2 लोग चले गए हैं कोरोना में, तो अभी 3 लोग हमी है। हम
0: अच्छा,
1: एक रविंदर बोल के है, उन्हें साकेत में रहता है, एक गोपाल स्वामी बोल के उन्हें विजयवाड़ा में रहता।

0: तो बहुत अच्छा फ्रेंडशिप, अभी भी टिल टुडे वी आर टॉकिंग ईच अदर,
1: अरे वाह,
0: क्योंकि हमारे को रोज सुबह में मैं उनको मैसेजेस लगाता हूँ, मैसेज नहीं लगाते वो मेरे को बोल देते, अरे अन्ना तुम्हारा मैसेज नहीं आया, क्या बात है, पार्क को नहीं गए क्या, क्या कर रहे क्या है। इट अबाउट 4:30 to 5 o'clock के अंदर उसको मैसेज जाना चाहिए। तो ऐसा हमारा फ्रेंडशिप जैसा टिल टूडे ऑल्सो वी आर कंटिन्यूइंग, तो
1: वेरी
0: हमारा
1: नाइस,
0: बहुत ही अच्छा सालों से हमारा फ्रेंडशिप है। उसके
1: बहुत
0: घर
1: अच्छी
0: में कुछ
1: बात
0: भी
1: है
0: हों,
1: सर।
0: जो फंक्शन हों, जो हमारे घर में हों, वो लोग आते हैं, वो लोग करते हैं, देखते हैं। बचपन के साथियां हैं हमारे, यहाँ मदर हों जो फादर हों, जो बचपन से उन लोग को सबको पहचानते हैं। तो हमारे घर में बहुत ही अच्छा खेले से है, ये करे से स्कूल में बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत अच्छे से। हमारे बाजू में रेस कोर्स ही है, और रेस कोर्स में क्या है, रेस कोर्स नहीं बने जब वहाँ एक झाड़ था, तो झाड़ को जाके हम खेलते थे वहां पर रेस कोर्स के अंदर। बहुत ही अच्छा बनियन ट्री था,
1: अच्छा,
0: उसके पकड़ लेके बहुत ही अच्छा खेलते थे, पूरे लगा
1: बहुत
0: पैसा
1: अच्छी
0: है
1: बात है सर।
0: उसको, लोगों को सताना करना वो करना।
1: जी जी
0: बचपन
1: जी
0: में जो भी खेला है वो पूरे खेल लिए थे वहां पर।
1: बहुत
0: तो
1: अच्छी बात है सर, थैंक यू फॉर
0: थैंक यू वेरी
1: शेयरिंग
0: मच
1: दैट
0: माँ,
1: विद
0: आप
1: अस।
0: हमारे को चांस दिए,
1: थैंक यू
0: हम
1: सर,
0: ज्यादा
1: थैंक यू,
0: बोलना नहीं चाह रहे।
1: थैंक यू
0: वेरी
1: सर,
0: वेरी थैंक यू वेरी मच माँ,
1: थैंक यू सर,
0: थैंक यू।
1: थैंक यू। हेलो,
0: गुड आफ्टरनून मैडम,
1: गुड
0: मैं रेडियो में
1: आफ्टरनून।
0: सुना मेरी बात, जाओ खाओ
1: जी
0: बेटा।
1: जी
0: हाँ
1: मैम,
0: हाँ
1: आप
0: मैडम,
1: ऑन एयर
0: दोस्ती
1: है।
0: बोले तो, हाँ वो दोस्ती बोले तो, हमारे एक मकानदार थे, उनकी
1: हाँ
0: बच्ची को पोलियो था, तो
1: अच्छा।
0: उन्होंने बहुत बच्ची बहुत चाहती थी अभी भी, तो फ्रेंडशिप डे मैं फोन करी थी उसको। तो रुबीना है उसका नाम,
1: अच्छा
0: हमारी बहू की सहेली का नाम समिया है
1: अच्छा
0: जी। तो है
1: ओके
0: तो
1: ओके,
0: मैं बहुत क्लोज है, आज भी बात करती हूँ मैं, आओ आओ बोलते हो, वो नहीं आ सक रही, मैं जा नहीं सक रही हूँ, मगर फोन पे है टच।
1: अरे वाह, फोन के थ्रू टच में हो।
0: और रिबीना डालते थे वो जमाने में, रिबीनाओं से
1: हाँ
0: चुड़ा गई, बोलते मेरे से चुड़ा गई तेरे, मैं तेरे से नहीं रिबीनाओं से बोली बोली,
1: अच्छा,
0: आज भी टच में 40 साल हो गया मैडम।
1: अरे वाह अरे वाह अरे
0: हाँ
1: वाह,
0: बहुत
1: बढ़िया
0: क्लोज है,
1: बढ़िया।
0: हर कोई पूछते मेरे को, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा एहसान है,
1: थैंक यू,
0: बहुत
1: जी
0: है वैसे
1: हाँ
0: तो, मगर एक ये है आप जो बोले बचपन बोले, थैंक
1: हाँ
0: यू मैडम।
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
2: ఒక మాట చెప్పన, ఇప్పుడే వేసవి మొదలయ్యింది, పైగా 7,000 రూపాయల కరెంటు బిల్లు కూడా వస్తోంది. భార్య సోలార్ ప్యానెల్ పెట్టించమని చెబుతోంది, ప్రభుత్వం సబ్సిడీ కూడా ఇస్తుందని అంటుంది. నేను అడిగిన వాళ్ళందరికీ కరెంటు బిల్ 0 వస్తుంది. ఈసారి అయితే పెట్టించే తీరుతాను. కరెంటు ఉచితంగా దొరికితే ఎందుకు తీసుకోకూడదు? మీరు కూడా పెట్టించండి. పిఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన చేరడానికి రిజిస్టర్ చేసుకోండి. పిఎం సూర్యఘర్ .gov.in.

0: दोस्तों, फन्ने खान मूवी से आपने सुना गाना हल्का हल्का, और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून
0: गुड
1: आदाब। हाँ जी जी
0: आफ्टरनून, आदाब, बताइए।
1: सभी सुनने वाले भाई बहनों, दोस्तों को भी मेरा प्यार भरा सलाम आदाब। अल्लाह सभी को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सेहतमंद रखे, यही दुआ है मेरी।
0: जी,
1: जी
0: आपका
1: शेर खान
0: नाम
1: बोल रहा हूँ,
0: बताइए।
1: तबक्कत नाम
0: और
1: है।
0: हाँ, शेर खान जी, बताइए आपके बचपन की यादों के बारे में बताइए।
1: बचपन की यादें तो इतनी है मैडम, और सभी की इतनी रहती है कि एक किताब भी लिखने को बैठ जाए तो कम पड़ जाएंगी। तो बचपन में जब मैं जल्दी ही ब्लाइंड हो गया था 3 साल की उम्र में, उसके बाद ही मेरी जो भी जिंदगी का स्टार्ट हुआ है बाद में ही हुआ है। मेरे दोस्त बने, मैं
0: अच्छा
1: मदरसे में गया या खेला कूदा दोस्तों
0: अच्छा
1: के साथ, तो बहुत सारे दोस्त थे। आज वो सब, कोई शादी, किसी की शादी हो गई, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई बिजी हो गया, लेकिन मेरा एक दोस्त था मसरत खान, जो
0: अच्छा
1: बचपन में दोस्ती थी हमारी, घर के आसपास रहते थे। फिर बाद में वो लोग किधर चले गए, हम इधर चले गए, तो वो काफी वक्त हो गया। फिर कुछ बहुत लंबे वक्त के बाद हमारी एक दिन मुलाकात हुई, अनजान जगह पे अनजान तरह से मुलाकात हुई, लेकिन मैं भी उसको नहीं भूला था, वो भी मुझे नहीं भूला। तो वो मेरे पास में आया और मुझे सलाम कलाम करा और बोले पहचानता क्या, तो मैंने नाम ले लिया, बोला तू मसरत खान है। तो
0: हाँ
1: उसने मेरी पीठ थपथपाया, अरे वाह बोले भाई क्या मेमोरी है, तू बचपन से अभी तक नहीं भूला। फिर
0: अरे वाह,
1: हम फिर से कांटेक्ट में आ गए और आज भी हमारा बातचीत मुलाकात होती रहती। और
0: अरे
1: मेरे
0: वाह,
1: दूसरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे चाहते हैं बहुत, समीर, जमीर, रियाज,
0: हाँ,
1: मसरत खान, ऐसे मतलब बचपन से है तो अभी तक हम कांटेक्ट में भी है। और दूसरे हैं तो कुछ बिजी हो गए, शादी वादी हो गई, अब जाते आते ऐसी ही कुछ सलाम दुआ हो जाती, मुलाकात होती। तो
0: अच्छा,
1: लेकिन कुछ कुछ है जो पक्के, जो बचपन से जुड़े हुए थे, वो आज भी कांटेक्ट में है
0: अरे
1: और
0: वाह,
1: हमारी मुलाकात होती रहती, फोन पे
0: तो
1: बात
0: आपने
1: भी
0: अपने
1: होती।
0: बचपन के दोस्त को सिर्फ उसकी आवाज से पहचाना इतने सालों बाद।
1: हाँ, आवाज से पहचाना और हम मिले
0: अच्छा
1: बहुत लंबे वक्त के बाद मिले, और अब
0: अच्छा
1: फिर से हम, हमारे से कांटेक्ट है, हम फोन पे बात करते हैं, जाते हैं तो वो मेरे को मिलने को आता है, बहुत सारी खिदमत भी करता है मेरी।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी विद
1: हाँ,
0: अस शेर
1: हमारे
0: खान जी।
1: मुमताज बाजी को भी सलाम है, बहुत दिन से उनकी आवाज नहीं आई। और
0: हाँ,
1: दोस्ती पे कोई गाना प्ले कर दीजिए ना मैडम।
0: श्योर श्योर श्योर, पक्की बात है। थैंक यू
1: ओके,
0: सर,
1: थैंक
0: थैंक
1: यू,
0: यू, थैंक
1: थैंक
0: यू।
1: यू।
0: हेलो,
1: हेलो,
0: यस, गुड
1: गुड
0: आफ्टरनून
1: आफ्टरनून
0: सर,
1: माँ, गुड
0: गुड
1: आफ्टरनून।
0: आफ्टरनून
1: पहले
0: सर।
1: कट हो गया माँ, नंबर
0: जी
1: से
0: जी
1: बोल रहे
0: सर,
1: थे, कट हो गया। हाँ,
0: जी सर। सर, आज का टॉपिक के बारे में बात करिए, आप आपके बचपन
1: टॉपिक,
0: की याद
1: हाँ
0: के बारे
1: टॉपिक
0: में,
1: बारे में बात तो करती
0: और
1: हूँ माँ।
0: हिंदी में हो सके तो बात कीजिए,
1: क्या माँ,
0: हिंदी में।
1: हेलो,
0: हेलो सर,
1: हाँ टॉपिक बारे में बात करता हूँ।
0: जी सर, बताइए।
1: मुझे भी बचपन जो दोस्त दो जना रहे हैं माम, हमें
0: हाँ
1: किधर गए तो भी, कहाँ गए तो भी, दो जने मिलकर जाते हैं।
0: हाँ हाँ
1: बचपन से क्या मुझे क्या होना, मैं उससे क्या तो मुश्किल है तो जाको मैं देखने वाला, मैं गए तो मुश्किल है तो उन देखने वाला। वैसा अच्छा, बचपन से तीर्थ जाना, स्कूल को जाना, सब जाने वाला ऐसा करे तो। अब क्या तो उन दो जने गुजर गई माँ,

0: हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: नमस्कार मैडम,
0: नमस्कार सर। नमस्कार,
1: गुड
0: बताइए।
1: आफ्टरनून, के रमेश मैं बात कर रहा हूँ।
0: गुड आफ्टरनून के रमेश
1: मैंने
0: जी,
1: आप
0: बताइए।
1: भी बहुत अच्छा किया मैडम।
0: जी
1: मेरे फ्रेंड को मैं खो दिया हूँ। मैं तो क्या
0: अच्छा
1: हुआ, लास्ट ईयर मर गया। मरने से
0: अच्छा
1: पहले 1 महीना पहले मेरे घर पे आके 2-3 घंटा बैठ के चले गए मैडम। लास्ट वही
0: ओ
1: मिला मेरे को, वो मिस हो गया
0: अच्छा
1: मेरे को। बहुत मैं दुखी हो गई।
0: अच्छा
1: इतना क्लोज फ्रेंड थे, बोलते बहुत बचपन ही का फ्रेंड था, कम से
0: अच्छा
1: कम 60 साल का, 55 साल का फ्रेंड था। और
0: ओ
1: बाकी तीनों फ्रेंड से हम लोग मिलजुल के रहते हैं मैडम। आदि नसुरा, वाई कृष्णा, के रमेश
0: अच्छा
1: एंड ये लक्ष्मी नारायण बोलते बुजुर्ग हैं मैडम। अभी
0: अच्छा
1: तीन लोग का हम लोग मिलजुल के बहुत हर जगह किधर भी जाते तो हम लोग तीनों जाते हैं। फैमिली के
0: हाँ
1: साथ जाके बहुत मिलजुल के रहते हैं हम लोग।
0: हाँ
1: बहुत अच्छा दिखता है मैडम। एक
0: अरे
1: गाना
0: वाह
1: डालते हैं मैडम।
0: जी, बताइए कौन सा
1: मेरा नाम
0: गाना।
1: जोकर में, एक भाई जरा देश को चलो, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, देखता
0: हाँ,
1: मैडम।
0: अच्छा गाना है। जी जी सर।
1: अच्छा मैडम,
0: हाँ,
1: धन्यवाद मैडम।
0: थैंक यू
1: ठीक
0: फॉर शेयरिंग दैट विद अस सर। थैंक यू।

0: हेलो,
1: हरि ओम सर। आप
0: हाँ जी,
1: ऑनर
0: मैं
1: है
0: विलास
1: सर?
0: पेन। हाँ जी,
1: आप ऑनर है सर?
0: हाँ जी,
1: जी
0: मैं विलास पेनुरकर नल्ला कुंटा भाग्यनगर से बोल रहा हूँ।
1: जी विलास जी।
0: तो मित्र के बारे में एक बहुत ही रोमांचक घटना मेरे साथ में हुई है। आज से लगभग 55 वर्षों के नीचे मेरे एक मित्र थे,
1: अच्छा,
0: जो उस समय शिक्षक के नाते काम करते थे। मेरे में और उनमें 10 वर्षों का अंतर था,
1: अच्छा,
0: लेकिन हमारी बहुत अच्छी मैत्री थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो एकदम विद्वान थे, मलखाम पटु थे। मलखाम यानी एक खेल होता है
1: हाँ,
0: जिसको हम जिम्नास्ट भी कहते हैं।
1: अच्छा, हाँ,
0: तो उसमें वो बहुत अच्छा करते थे और शिक्षक भी थे, बांसुरी वादक थे। तो उस समय हमारी बहुत अच्छी मैत्री थी। उसके पश्चात उनका स्थानांतरण कहीं हो गया और वो महाराष्ट्र चले गए और
1: अच्छा,
0: हम में कोई संबंध नहीं रहा।
1: ओ ओके।
0: लेकिन विशेष बात ये हुई कि आज से 8 वर्षों के नीचे उन्होंने मेरे एक मित्र के द्वारा मेरा भ्रमणध्वनि क्रमांक यानी मेरा मोबाइल नंबर प्राप्त किया और उन्होंने मुझसे संपर्क किया। ये हुआ 50 वर्षों के नीचे। 50 वर्षों तक हमारी उनकी बातचीत नहीं थी,
1: हाँ,
0: लेकिन उसके पश्चात उन्होंने मुझसे बात की 50 वर्षों के बाद में।
1: वाओ, ओके ओके।
0: और फिर उसके बाद में हम बात करते रहे और अभी अभी 2 वर्षों के नीचे मैं पुणे गया था। तो वो मुंबई में रहते हैं, तो मैं पुणे से मुंबई जा करके उनसे मिलकर आया हूँ।
1: अरे वाह।
0: तो यानी वो जो हमारा मिलन था, वो वैसे तो अभी हम पिछले 5 वर्षों से भ्रमण ध्वनि यंत्र पर बात कर रहे थे, लेकिन प्रत्यक्ष में जो मिलना था और वो जो हमारा आनंद था, उसको शायद मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल, बिकॉज इतने सालों बाद किसी से कनेक्ट करना बहुत ही
0: हाँ
1: बड़ी बात है। जी जी
0: हाँ
1: सर।
0: जी, हाँ जी। और ये क्या है कि मैं और हमारे एक मित्र थे, हम दोनों उनके मित्र थे। तो अभी हम दोनों मित्र जो यहाँ पर है स्थानीय, उनसे भी अब मेरी बात होती है। तो हमारा विषय यही होता है कि वो जो हमारे मित्र हैं जो मुंबई में रहते हैं,
1: हाँ,
0: उनका नाम है अप्पा साहेब कागे।
1: अच्छा,
0: वो एक शिक्षक थे, बाद में अंग्रेजी

0: के प्राध्यापक बने, फिर बाद में आकाशवाणी पे वो बांसुरी वादक भी थे, और मैंने अष्टपैलू व्यक्तिमत्व था उनका, और आज भी वो जीवित है भगवान की कृपा से।
1: अच्छा।
0: और आज भी बहुत अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखा है उन्होंने।
1: अरे वाह, क्या एज है उनकी?
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: नहीं नहीं क्या एज है उनकी?
0: उनकी एज है अभी 87 वर्षों की।
1: अरे वाह, वेरी नाइस।
0: लेकिन आज भी वो 60-65 वर्षों के दिखाई देते हैं।
1: अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छी
0: शरीर
1: बात है।
0: उनकी बहुत अच्छी है, और आज भी वो हर दिन घंटा डेढ़ घंटा व्यायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और मैं समझता हूँ इसी के कारण वो अपने आप को एकदम से स्वस्थ रखे हुए हैं।
1: बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस।
0: इस कारण से फिर से एक बार उनका स्मरण हुआ और वो पुराने बातें भी हमारी ताजा हो गई।
1: अरे
0: और मुझे नहीं लगा था कि भाई उसके बाद में हम कभी मिल पाएंगे, लेकिन 50 वर्षों तक हमारा कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन उसके बाद में हम जब मिलते हैं तो वो आनंद की कोई सीमा नहीं थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस।
0: आभारी हूँ आपने मुझे समय दिया।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।

दोस्तों स्वानंद किरकिरे का म्यूजिक नवराई मांझी इंग्लिश विंग्लिश से आपने सुना वो गाना, और आज के फोन इन प्रोग्राम पर कितनी सारी कहानियां हमें सुनने मिली। जैसा मैंने कहा कि ये फोन इन सेगमेंट आपकी कहानी, आपकी आवाज, आपके किस्से सुनने के लिए बना है, और आपने सबने शेयर किया कि किस तरह से आपके बचपन के दोस्तों की यादें आप इतना दिल को दिल के करीब रखते हैं, संजोए रखते हैं दिल से, और उन सभी बचपन के दोस्तों को सलाम जिनके साथ आप आज भी टच में हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जब कॉन्टैक्ट्स ईजिली टूट जाते हैं, दिन हफ्ते नहीं लगते हमें किसी को भूलने में, उसी दौर में अगर हम किसी के साथ सालों साल कोई रिश्ता बनाए रख रहे हैं तो बहुत बहुत बड़ी बात है। फ़ोन्स के साथ साथ हमें मैसेजेस भी आए, और हमारा हमारे एक रेगुलर लिसनर अश्विन जी ने हमें मैसेज किया। वो बहुत अच्छी शायरी हमारे साथ शेयर की है उन्होंने आज की सुबह। वो कहते हैं कि कभी मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कभी नाराज़गियों का बदलाव मिलेगा, कभी मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कभी भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा, तू चलता चल राही अपने कर्म पाथ पर, तेरे जैसा भाव, तेरा जैसा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। इट्स ब्यूटिफुल अश्विन जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस शायरी विद अस। ये हमें सिखाता है कि बाहरी तौर पर हमें जो भी भावनाओं को फेस करना पड़े, कभी किसी का गुस्सा, कभी किसी की प्रशंसा, कभी किसी का प्यार, कभी किसी की नफरत, उससे हमारे अंदर हमारे भीतर का जो बैलेंस है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, दैट शुड ऑलवेज बी मेंटेन। और उसी नोट पर अगले गाने की तरफ रुख मोड़ते हैं। Almost, I would say 14 minutes for the show to go and great playlist still on track. I've got a lovely number coming up. ये एक album song है Hardy Sandhu की आवाज़ में, गाने का नाम है ना, बने रहिए मेरे यानी RJ Pearl के साथ। Show का नाम Hello Rainbow 101.9 FM Rainbow पर।

101.9. तो दोस्तों 101.9 एफएम रेनबो पर ढेर सारी बातें की आज हमने, हेलो रेनबो पर, नमस्ते हेलो आदाब पर भी, और बहुत सारी यादें ताज़ा हुई, हमारे लिसनर्स का नज़रिया हमने सुना, और इसी तरह शो हर सुबह 10 to 2 आप तक पहुंचता रहेगा लाइव, अलग अलग आरजेज, एंड यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन हेलो रेनबो ऑन द फोन इन प्रोग्राम एज वेल. लेकिन फिलहाल मेरे जाने का वक्त हो चुका है, तो आपसे विदा लेती हूँ. एंड लाइक आई ऑलवेज से कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सुनते रहिए 101.9 एफएम रेनबो, क्योंकि आपके लिए आरजे रेणुका ऑलरेडी रेडी है स्टूडियो में अगला शो, और बहुत सारी प्यारी गपशप और प्यारा सा प्लेलिस्ट आपके लिए हाजिर रहेगा. कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा इसी चैनल पर 101.9 एफएम रेनबो पर. वेल, आई टेक योर लीव, फिर मिलेंगे, अलविदा, और अपना ख्याल रखिए.

0: ईस्वी के दरमियान लिखे हैं, और जब इंग्लैंड बरतानिया की सरजमीन पर आप तालीम हासिल कर रहे थे। शुक्रिया।
1: समीन, आपने जनाब खुशतर साहब की ज़बानी, प्रोफेसर करीमुद्दीन अहमद की ज़िंदगी, इल्मी सफ़र और उर्दू अदब के लिए उनकी गिराकदर खिदमात के बारे में मालूमात हासिल की। बिलाशुबा ऐसी अजीम शख्सियत अपनी फ़िक्र, तहक़ीक और तसानीफ़ के ज़रिए आने वाली नस्लों की रहनुमाई करती रहती हैं। इसी उम्मीद के साथ हम भी इल्म और अदब से अपना ताल्लुक मजबूत करें।
2: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे हैं। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे हैं, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पर गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बग़ैर हेलमेट के और बग़ैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।
1: दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और अब वक्त हुआ चला है हमारे दिलकश यादगार और मौसीकी से सजी महफिल गीत सुरीले गाता जाका। मौसीकी वो ज़बान है जो दिलों के फासले मिटा देती है, एहसासात को नगमों में ढाल देती है और ज़िंदगी के हसीन लम्हों को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। यही वजह है कि दुनिया की हर तहजीब में मौसीकी को खुशी, मोहब्बत और उम्मीद की अलामत समझा जाता है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं खूबसूरत हिंदी फिल्मी नगमों का एक मुंतखब गुलदस्ता और साथ ही शेयर करेंगे इस दिलकश शहर हैदराबाद की, जो अपनी तारीख, तहजीब, सकाफ़त, इल्म व अदब, शाइस्ता ज़बान, मेहमान नवाजी और गंगा जमनी रिवायत की बदौलत दुनिया भर में मुनफरिद मकाम रखता है। सामीन, हैदराबाद सिर्फ़ ईंट और पत्थरों से आबाद एक शहर नहीं बल्कि सदियों की तहजीब, मोहब्बत और रवादारी का जीता जागता इस्तेहारा है। यहाँ चार मीनार की अजमत है, गोलकोंडा की तारीख है, हुसैन सागर की दिलकशी है, इल्मी इदारों की रोशनी है, बाज़ारों की रौनक है, हैदराबादी बिरयानी की खुशबू है और सबसे बढ़कर यहाँ के लोगों के दिलों में मोहब्बत, खलूस और एहतराम की दौलत है। इसी मुनासबत से एक शेर मुलाहजा कीजिए कि खुशबुओं से मुअत्तर है ये गुलशन दकन, खुशबुओं से मुअत्तर है ये गुलशन दकन, हर सिमत मोहब्बत का है रोशन सा चमन। और एक और शेर कि ये शहर सिर्फ इमारतों का सिलसिला नहीं, ये शहर सिर्फ इमारतों का सिलसिला नहीं, ये तहजीब, मोहब्बत और वफाओं की दास्तां भी है। तो आइए हैदराबाद की दिलकश फिजाओं, उसकी तहजीबी रंगीनों और मोहब्बत भरी रिवायतों को महसूस करते हुए अपने आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं और सुनते हैं आज का पहला खूबसूरत और यादगार नगमा।

सामीन, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मौसीकी प्रोग्राम गीत सुरेले गाता जा। दोस्तों, हैदराबाद की आन बान और शान सिर्फ उसकी तारीखी इमारतों में नहीं बल्कि उसके इल्मी वक़ार में भी नुमाया नज़र आती है। ये शहर बरसों से इल्म, अदब, तहकीक और तालीम का अहम मरकज़ रहा है। यहाँ के मुमताज़ तालीम इदारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले तलबा को इल्म की रोशनी अता करते हैं और यही वजह है कि हैदराबाद को नौजवानों के ख्वाबों की ताबीर का शहर भी कहा जाता है। एक शेर मुलाहजा कीजिए कि चराग इल्म जहाँ रोशन हुआ करते हैं वहीं से कौम के रोशन सफ़र शुरू होते हैं। इल्म की इसी रोशनी के साथ आइए सुनते हैं आज का अगला नगमा।

समीन, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मौसीकी प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा, और मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त मशकूर अहमद। समीन, हैदराबाद की आन बान और शान में सालार जंग म्यूज़ियम का भी एक नुमाया मकाम है। दुनिया के मशहूर अजायब घरों में शुमार होने वाला ये म्यूज़ियम नादिर फन पारों, तारीखी नवादरात, कदीम मखतूतात और कीमती मुजस्मों का अजीम ख़जाना अपने अंदर समोए हुए यहाँ आकर महसूस होता है कि तारीख आज भी हमारे दरमियान ज़िंदा है। शेर मुलाहजा कीजिए कि वरक वरक में माजी की खुशबू बसी हुई, वरक वरक में माजी की खुशबू बसी हुई, यहाँ तारीख भी ज़िंदा है, फ़न भी जावेदा। और अब तारीख और फ़न के इस हसीन इंतज़ार के साथ सुनते हैं ये अगला गीत।

सामीन, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मौसीकी प्रोग्राम गीत सुरेले गाता जा। और साथ साथ हम जिक्र कर रहे हैं हैदराबाद की आन बान और शान के बारे में। सामीन, जब भी हैदराबाद का जिक्र होता है तो उसकी मशहूर बिरयानी, खुश जायका हलीम, डबल का मीठा, खोबानी का मीठा और ईरानी चाय का तज़किरा ज़रूर होता है। ये जायके सिर्फ खाने नहीं बल्कि शहर की मेहमान नवाजी और सकाफत की पहचान है। यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सयाह इन जायकों से लुत्फ़अंदोज़ हुए बग़ैर वापस नहीं जाते। शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि जायकों में भी यहाँ तहज़ीब की खुशबू मिले, जायकों में भी यहाँ तहजीब की खुशबू मिले, हैदराबाद हर दिल को अपना बना ले।

सामिन, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मौसीकी प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। और साथ साथ हम जिक्र कर रहे हैं हैदराबाद की आन बान और शान के बारे में। दोस्तों, हैदराबाद अपनी तारीखी अजमत के साथ जदीद तरक्की की भी रोशन मिसाल है। एक तरफ चार मीनार, गोलकुंडा और चौमहल्ला पैलेस जैसे तारीखी आसार हैं, तो दूसरी जानिब जदीद आईटी पार्क्स, कुशादा सड़कें, मेट्रो रेल और आलमी मियार के तहकीकी इदारे इस शहर को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं। यही इम्तिजाज हैदराबाद को माजी और मुस्तकबिल के दरमियान एक खूबसूरत पुल बनाता है। शेर मुलाहजा कीजिए कि रिवायतों को संभाले तरक्की के साथ चले, रिवायतों को संभाले तरक्की के साथ चले, यही है शहर।

0: मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। इंसान को अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार खुद एहतसाबी और अपनी गलतियों पर गौर फिक्र करना चाहिए। आज का पैगाम ये है कि इंसान को अपने फ़ैसलों और आमाल का जायज़ा लेते रहना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए या नुकसान पहुंच जाए तो उसका एहसास होना और उससे सबक हासिल करना ज़रूरी है। अपनी कोताहियों को मामूली समझना या उन पर नदामत महसूस न करना इंसान को मज़ीद नुकसान की तरफ ले जा सकता है। अपनी गलतियों को पहचानो, उनसे सबक सीखो और अपनी इसलाह की कोशिश करो। दानिशमंद वो नहीं जो कभी गलती ना करे, बल्कि वो है जो गलती के बाद खुद को संभाल ले। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभी उसकी अपनी बेएहतियाती, जिद या गफलत होती है। अपने आप की कदर करो, क्योंकि जो शख्स खुद को संभाल लेता है वो ज़िंदगी के बड़े से बड़े नुकसान की तिलाफी कर सकता है।
1: सामिन, अभी आपने पैगाम शब जनाब जैदी साहब की आवाज़ में समाप्त किया। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम नैरंग अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान मशकूर अहमद को इजाज़त दीजिए। आपकी मोहब्बतों और तवज्जो का बेहद शुक्रिया।

इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 10:59 हो रहे हैं और कुछ ही देर में देहरी से हिंदी और अंग्रेज़ी खबरें रिले की

0: संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई, विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते सहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाओ अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: That is the end of this news bulletin.
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज श्रोताओं हमारे साथ आमंत्रित हैं. हमारे समक्ष वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: प्राची, आपके साथ साथ गौरा, आपको भी गुड इवनिंग.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: थैंक यू प्राची. सिद्धार्थ, वंस अगेन गुड इवनिंग, वेलकम. Listeners, a quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex rises over 150 points. Nifty settles above 24,600. RBI leaves repo rate unchanged. Raises current fiscal year growth forecast to 6.7%. Trims inflation projection to 5%. And global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 150 अंकों से ऊपर बढ़ा. निफ्टी 24,600 से ऊपर बंद हुआ. भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. चालू वित्त वर्ष में विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया. वहीं महंगाई दर का अनुमान 5% घटाया है. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी.
0: Listeners, before we move further into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स 0.2% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% बढ़ा. बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा, दोनों प्रमुख शेयर सूचकांक कमजोर होते नजर आए. हालांकि कारोबार के अंत में क्लोजिंग ऑक्शन सत्र के बाद दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कुछ हद तक रिकवरी भी की.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट टुडे. द सेंसेक्स गेन्ड 152 पॉइंट्स टू क्लोज एट 78,581. द निफ्टी रोज मार्जिनली बाय 10 पॉइंट्स to settle at 24,625. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index rose 0.2% and the Small-Cap 100 Index added 0.8%. Earlier, the markets opened in the positive zone, but as the session progressed, both benchmark indices slipped into negative territory. However, towards the end of the session, the Sensex and the Nifty paired their losses after the closing auction session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. सबसे ज्यादा बढ़त वाली कंपनियों के शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट 2%, एनटीपीसी 1.8% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.7% बढ़े. वहीं घाटा दर्ज करने वाली कंपनियों के शेयरों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1.2%, एचसीएल टेक 1% से अधिक और रिलायंस में लगभग 1% की गिरावट आई.
0: In sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, housing finance advanced 1.8%, metal rose 1.6% and auto gained 1.4%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt, energy and oil and gas fell by 0.4%, mid-small private banks fell 0.3% and capital goods dropped by 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,292 companies

0: He's advanced 1,958 declined and 198 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ. सिद्धार्थ, अगर हम पिछले यूएस स्टॉक मार्केट के सेशन की बात करें तो वहां पर एक रैली रही, तो क्या ये उसी का प्रतिरूप हमें आज बाजार में देखने को मिला कि बाजार जो है पॉजिटिव नोट पर बंद हुए?
2: नहीं, उसके अलावा प्राची, जो मुझे लगता है न केवल जो यूएस मार्केट का रिफ्लेक्शन जो आप बोल रही हैं वहाँ पे जो तेज़ी है पिछले 3-4 दिनों में, खासकर आईटी स्टॉक्स में तेज़ी है जो अमेरिकी बाज़ारों में, मुझे लगता है कि आज जो मुझे लगता है जैसा जैसे जब बाज़ार खुले तो काफ़ी फ्लैट थे, उसके बाद गिरे भी लेकिन उसके बाद रिकवरी आई. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2-3 जो महत्वपूर्ण कारण, मुझे लगता है खासकर एक जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध है उसकी जो अनसर्टिनिटी है वो कहीं ना कहीं अभी भी बाज़ार में बनी हुई है. और उसके अलावा मुझे लगता है आज प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला मुझे लगता है. तो कहीं ना कहीं ये 2 कारण और मुझे लगते हैं जो जो बाज़ार पे कहीं ना कहीं हावी रहे.
1: रेपो रेट
2: जो आया, आरबीआई का जो अनाउंसमेंट है रिजर्व बैंक का, सेंट्रल बैंक का, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड लाइंस पे था. वो एक्सपेक्टेड था कि कोई बहुत ज़्यादा, मतलब इस समय कोई वो बदलाव
1: नहीं था, बिल्कुल नहीं.
2: वो जो न्यूट्रल स्टांस है, और वो आप देखेंगे चाहे अमेरिका का जो फेड है, फेड रिजर्व, उन्होंने भी अभी तक अपने इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया, चाहे यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो. तो मुझे लगता है वो उसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं था. बाजार ने उसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रखा था, और वो अच्छा भी है, शुभ संकेत है हमारी बाजारों के लिए.
0: सो दैट लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स बिल्डिंग इन सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, कीपिंग ऑल दैट इन माइंड एंड ऑल्सो कीपिंग आई थिंक द फैक्ट दैट द इंडियन इकोनॉमी इज सॉलिड रोबस्ट, आई थिंक कंजम्पशन इज स्टिल देयर, द मॉनसून हैज पिक्ड अप which was predicted not to be so good, but I think by and large it's averaging out with little pockets of disturbance. Do you think that somewhere in August and September there was a sentiment that maybe the markets won't be really rallying or really picking up? Do you think the range in which they're going to move is going to go up a step now?
2: Gaurav, it will all depend the direction of the market for, as you asked, would they move out of the current range. That I think to a large extent would depend on how US President Donald Trump, his next stance, because obviously now first current uncertainty, that is the US-Iran war that is going on, and one thing which has become certain is uncertainty. Every day we hear both the sides, or at least the American president saying or announcing that they're expecting to reach a peace deal with Iran, but from the other side then there is some contradiction. Again yesterday their hopes have been raised, he's issued a statement sometime earlier in the day. Also we saw the statement that the Strait of Hormuz is likely to get normal, operations are likely to get normalized. So I think one would be how the US-Iran conflict pans out in the coming days, and how the peace, whatever peace deal is reached, how it is actually implemented, or whether it is something which is stable, which stabilizes or is implemented actually on the ground. So I think that would be one factor. Plus, yes, as far as our own GDP numbers would come now, we had very good GDP numbers. Q4 was very good. And also, if you look at the monetary policy announcements by the RBI governor, I think he's also up, the growth prospect has gone up. And the concern, which is that inflation was a concern, obviously, because of the West Asia, because we are huge importers of energy, and that obviously feeds into our prices. So, right. So that also apprehension he has kind of allayed, and they've also lowered the projection for inflation, though very small,
0: marginally,
2: by a small percentage. But even then, he is confident of keeping it within the range of 4% plus minus 2.
0: Right. So help us here, Siddharth, understand, do a little zoom out and say that the resilience or the range, or I think the flexibility that the Indian market has shown over the last year, right? Uncertainty, geopolitical, everything starting. Tariffs and everything, right? And keeping all that in mind, how is international money, how is foreign funding now looking at India in the midterm to say, you know, because resilience plays a huge

0: Gaurav, very important question. And if we look at last, I would say from the time, especially if you look from the time Mr. Trump announced tariffs across the globe, and we were also a victim, I would say, of that, of his announcements. And after that, we saw a huge exit by the foreign institutional investors. And even there was, I would say, not say disappointment, but yes, there was concern also on the foreign direct investments, not only institutional or portfolio investors, also in terms of FDI inflows. So, and if you look at the numbers, the statistics that we have been getting from the from April this year, current financial year, starting April, if you look at the FII inflows, also look at the FDI inflows, we have got huge positives. So at least for FIIs, obviously the inflow is not so much still in the capital market, but right. Yes, hugely in the debt market. And that also, especially because we've also announced certain tax concessions to them. Even the yesterday, there were some amendments moved in Parliament by the finance minister, also giving a kind of ease of doing business to...
1: So it's on the radar for the economists in India and the policy.
0: Obviously, I think because the kind of stability, the growth prospects, if you look in medium to long term, despite so much of uncertainty, instability, we still continue to be well grounded, and we are still one of the fastest growing economies of the world.
1: Right, that's reassuring. Moving on to our next story, the Reserve Bank of India, RBI, has kept the repo rate unchanged at 5.25% while retaining a neutral policy stance. Announcing the Monetary Policy Committee's decision, RBI Governor Sanjay Malhotra said that the country's economic growth continues to be supported by resilient demand, and it remains the world's fastest growing major economy. The RBI has raised its growth projection for financial year 2027 and lowered its inflation forecast.
2: Taking all factors into consideration, real GDP growth for this year is now projected at 6.7%. This is 10 basis points higher than our previous projections. Q1 at 7%, Q2 at 6.4%, Q3 at 6.5%, and Q4 at 6.8%. CPI inflation increased to 4.4% in June after remaining below target for 16 consecutive months. It turned out to be lower by 30 basis points than what was our earlier projections. After considering all factors, CPI inflation for this year is now projected to be 5%, 10 basis lower than our earlier projections, with Q2 at 4.7, Q3 at 5.9, and Q4 at 5.5%.
3: Siddharth, repo rate unchanged, policy stance neutral, और GDP growth की जो forecast है, that is 6.7, जो कि एक राहत की सांस है, कैसे देखते हैं आप इसे?
0: नहीं प्राची, राहत ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये राहत की सांस है, बट मुझे लगता है कि जो कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी में है या जो रेजिलेंस की बात अभी गौरा कर रही थी, तो मुझे लगता है शायद उसी को उन्होंने अपने आज का जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है सेंट्रल बैंक का, वो उन्होंने उसी उसको और मजबूती से पेश किया है. आप अगर उनका स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो जहाँ तक महंगाई की बात उन्होंने कही है कि अभी भी महंगाई खाली फूड और फ्यूल और में ही जो है जो एक चिंता का सबब है, और दूसरा उन्होंने जो चिंता जताई है वो है खरीफ की जो सोइंग चल रही है इस समय और जो मॉनसून और एल नीनो का इम्पैक्ट, तो वो एक दो एरियाज हैं, ग्रे एरियाज. हालांकि उन्होंने उसके साथ साथ ये भी बोला कि जो डाइवर्सिफिकेशन के सरकार ने कदम उठाए हैं क्रॉप्स के, और जो हमारे पास अभी भी फूड ग्रेन के जो स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छे हैं, तो इसीलिए आरबीआई ने शायद जो महंगाई का जो उनका आकलन था, जो एस्टिमेट था, उसको भी मार्जिनली घटाया है. साथ साथ जो उन्होंने एक्सपोर्ट्स की बात की और जीडीपी का भी आकलन जो है उसको भी ऊपर किया है. पहले पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में इट वाज 6.6 और इस बार उन्होंने 6.7 का एस्टिमेट किया है फॉर दी करंट फाइनेंशियल ईयर. तो कहीं ना कहीं, और अगर आप रूरल डिमांड देखें या अर्बन डिमांड देखें, इंडस्ट्रियल साइड, सर्विस सेक्टर, तो कहीं ना कहीं, और जो लेटेस्ट नंबर्स आ रहे हैं, चाहे जीएसटी के नंबर्स आए हों या जो कार सेल्स के नंबर आए हों, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल दिखती है कि जो हिंदुस्तान मैक्रो इकोनॉमी फंडामेंटल्स हैं इंडिया के, वो इंटैक्ट हैं एंड देर इज नथिंग टू वरी.
3: बिल्कुल सिद्धार्थ, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी हमारे जो डोमेस्टिक इंडिकेटर्स हैं वो पहली तिमाही में काफ़ी रेजिलिएंट नजर आए. बहरहाल, इस संदर्भ में आइए सुनते हैं आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने क्या कहा.
2: Renewed tensions in West Asia, which are disruptive of global supply chains, volatility in international

0: international financial markets and weather-related shocks pose downside risks to growth. However, domestic economic activity has exhibited resilience, as reflected by the high-frequency indicators available for Q1. Early results of corporates for Q1 indicate healthy performance in the manufacturing sector. This is also corroborated by an expansionary PMI. Services activity too maintained its momentum in the wake of strong domestic demand. Overall, the Indian economy performed better than expected in Q1.
1: आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ी एक और खबर. रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ टेस्ट कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे. मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि इनके सुरक्षा फीचर्स और अन्य विवरण जल्द साझा किए जाएंगे. प्लास्टिक के नोट

0: थे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इनके सुरक्षा फीचर्स और अन्य विवरण जल्द साझा किए जाएंगे। प्लास्टिक के नोट जब चलन में आ जाएंगे, जिसकी परिकल्पना हम अभी कर रहे हैं, और किस तरीके से उभरेंगे ये तो वक्त बताएगा सिद्धार्थ, मगर आप इसे कैसा देखते हैं ये हम जानना चाहेंगे।
1: नहीं प्राची, मुझे लगता है कि दुनिया के 30 देश कम से कम ऑलरेडी प्लास्टिक नोट्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और RBI रिजर्व बैंक भी इसको एक पायलट के तहत अभी शुरू कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट होगा, हालांकि जो एक्चुअल हमको देखने को मिलेंगे नोट्स वो अगले साल अप्रैल में, जो उन्होंने बोला है अगले वित्त वर्ष के शुरू में। और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, कम से कम ऐसा बोला जाता है कि जो अपने कागज़ के नोट हैं उनसे कहीं ना कहीं कम से कम 2 से 4 गुना ज़्यादा उनका लाइफ स्पैन होता है। आप उसमें जो फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स और अच्छे डाल सकते हैं, और अगर लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा अगर कॉस्ट इनिशियली ज़्यादा भी होगी तो जो उनकी लाइफ स्पैन है अगर वो ज़्यादा है तो वो उसको कवर कर लेगी। तो कहीं ना कहीं एक तो दो कारण तो ये हो गए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली कि जो छोटे नोट्स हैं, जो छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स हैं
0: जी,
1: उनका जो उसका शुरुआत हम वहाँ से कर रहे हैं, और वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे 10 या 20 रुपए के नोट्स की जो बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो आप इस्तेमाल में आते हैं वो 10 से 10 रुपए या 20 रुपए के नोट्स का चलन ज़्यादा होता है।
0: हाँ,
1: जो 500 का नोट है वो आप रोज़ रोज़ हर चीज़ में अपने लेन देन में उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो है छोटे नोट्स, इसीलिए फोकस इज ऑन स्मॉल नोट्स, स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स। और ये आने वाला मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने बोला कि पायलट के तौर पे शुरुआत करें, अगर रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो इसको और जो है बड़े पैमाने में इसको आगे बढ़ाएंगे।
0: बिल्कुल।
2: मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज आइटम, द ऑफर फॉर सेल इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व्हिच क्लोज्ड टुडे अट्रैक्टेड बिड्स फॉर अबाउट 70% ऑफ द शेयर्स set aside for retail investors. According to BSE, the category placed bids for about 57.6 million shares compared to 82.2 million shares reserved for retail investors. Yesterday, offer for sale in the LIC received an overwhelming response from institutional investors and was oversubscribed. In view of the exceptional demand, the government had decided to exercise the green shoe option. Moving on to our next story, India's services sector remained in expansion territory in July, supported by healthy export demand and continued hiring. According to the HSBC India Services Purchasing Managers Index PMI, data compiled by S&P Global, the seasonally adjusted services PMI, business activity index stood at 53.3 in July. It remained above the 50 mark that separates growth from contraction. However, the country's service economy growth slowed in July as business activity rose at the weakest pace in over 4 years. This was largely due to softer demand, competitive pressures and order postponements. Meanwhile, service providers continued to report growth in activity with strong overseas demand emerging as a key support factor. The report showed that the rate of job creation showed an uptick from that in June, with service providers continuing to expand their workforce. Further, input cost inflation softened to a 6-month low and remained below the long-running average despite higher fuel, labour, material, technology and transportation expenses. Additionally, the HSBC India Composite PMI Output Index, which tracks both manufacturing and services activity, fell to 54.3 in July from 57.1% in June. So that here we're seeing figures and we're also seeing, mixed indications. And we also know that a lot of seasonal adjustments, normally some months, it does traditionally fall and does pick up later. Anything, any area of concern? Because we're moving overall over the indicators, we're seeing a marginally downward movement.
1: No, Gaurav, I don't think it is anything of concern, obviously. And also this PMI index, it also gives us it's a futuristic indication of things to come. So the heartening, still what is heartening in this is that it is above 50%. So anything above 50% indicates that there is expansion, there is in demand, so nothing to worry. And the other important why we should watch this data is also because, especially the service index, because almost 50% of Indian economy is now service sector. So I don't think there is anything to worry. Yes, obviously, and this is despite so much of uncertainty, and so I don't see still anything which should be

0: be a matter of concern.
1: Right. Okay. It could be considered in, as they say, in the normal flow of things.
0: And it is sometimes it's also month to month dips.
1: Absolutely.
0: So probably then next month it picks up.
1: And not read too much into it.
0: Yeah. And it is, since it is still futuristic and above 50%, so I don't think anything to as a matter of concern.
2: आगे बढ़ते हैं गौरा और जायजा लेते हैं एशिया बाजार का. प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 4% और जापान का निकेई 3.5% से अधिक बढ़ा. सिद्धार्थ, क्या ये कहना उचित होगा आज की तारीख में कि एआई को लेकर के जो भय जो एक लोगों के दिल में था वो अब धीरे धीरे निवेशकों के जहन से उतर रहा है, कम हो रहा है? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं एशियाई बाजार के संदर्भ में, तो आप क्या इससे सहमत होंगे कि अब ये भय उतर रहा है या फिर अभी कहीं ना कहीं और भी देखने की जरूरत है और वक्त लेने की जरूरत है?
0: देख प्राची, मुझे लगता है ये मतलब अगर मैं एकदम से कहूं कि नहीं ये खत्म हो गया है ये भय, तो ये सत्य नहीं होगा. क्योंकि जब ये भय आया था तब भी आप देखेंगे जो जिस मार्केट की आप बात कर रहे हैं साउथ कोरियन कॉस्पी, तो वहां पे जो दो बड़ी कंपनियां उनको रिकॉर्ड ऑर्डर्स मिले थे यूएस की कंपनियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चिप्स वगैरह बनाने.
2: कड़ी वहां से जुड़ी हुई.
0: हाँ बिल्कुल है, उसका बहुत बड़ा रोल है उनका वहां पे. क्योंकि दो बड़ी कंपनियां दुनिया को जो सप्लाई कर रही है चिप्स वो साउथ कोरिया के मार्केट में ही है. उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन से आता है तकरीबन 50%. तो ये जल्दबाजी होगा कहना कि अब वो भय खत्म हो गया. लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स आए हैं और कहीं ना कहीं जो एक अब जो लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना भी दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ का पार्ट है. हाँ, अब वो उसकी वैल्यूएशंस, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो कितना जस्टिफाई करेगा, वो आने वाले समय में तय होगा. और अभी ये कह देना कि भय खत्म हो गया, मुझे लगता है ये जल्दबाजी.
2: यानी कुछ चीजें गौरा भविष्य के गर्भ में रहने देनी चाहिए.
1: राइट. इनफैक्ट व्हेन वी टॉक ऑफ द फियर लिंक टू दिस, आई थिंक द कंसर्न दैट इट्स अ बबल, इट्स अ वेरी बिग बबल, इट्स गोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दैट समवेयर हैज बीन मॉडरेटेड. And I think also strengthened by the fact that, you know, it's not really a bubble, but it's a sunrise area.
0: Or would do the kind of investment justify the earnings? Probably that also is a reason.
1: Right. Our next story, government has operationalized the inventory-based cross-border e-commerce export framework under the Foreign Trade Policy 2023. The framework provides a comprehensive policy and procedural architecture for facilitating inventory-based cross-border e-commerce exports of goods manufactured or produced in India. It incorporates several safeguards to ensure that the benefits of e-commerce exports accrue to Indian manufacturers and MSMEs while maintaining regulatory oversight. It also provides for timely payments to Indian sellers within the prescribed timeline, irrespective of the receipt of payment from overseas buyers. A quick comment here, Siddharth, because one of the grudges of the MSMEs is that, you know, we want a quick turnaround time for the money to come back to us.
0: Timely
1: and
0: payment.
1: This will, yes, because that keeps them going.
0: Yeah, I think another one more step in the direction of ease of doing business and facilitating the process of for our exporters, and also obviously taking care of the interest of the MSME, small scale industries.
1: Right. Crude oil prices, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 1.4% up at $80.45 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.8% higher at $76.37 per barrel when reports last came in. Right. I think you already have made your comment on crude oil prices, so we shall move to gold and silver, the glittering metals. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 2.2% up at 1,47,490 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% higher at 2,28,800 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona 1.8% badhkar 145,140 rupaye prati 10 gram par tha, aur september anubandh wali chandi 2.7% ki badhat ke sath 227,520 rupaye prati kilogram par karobar kar rahi thi. Siddharth, samay ki paridhi mein rehte hue main tippani aap se chahungi sone ke dam par khas karke, aur ek sone chandi agar aap dono ke dam par bataye to behtar hai.
0: Nahi dekhiye, sona abhi tak jo bottom humne dekha is पिछले 2-3 महीने में हमने देखा तकरीबन $4,000 पर आउंस पे कहीं ना कहीं वो मतलब वहाँ बाइंग आ रही है. हाँ, वहाँ बाइंग आ रही है. लेकिन अभी आप जब आज की बात करें तो एक बार फिर कीमतें बढ़ी हैं, तकरीबन मुझे लगता है $4,100 के ऊपर. पर आउंस है, और उसके दो प्रमुख कारण जो मुझे लगता है, एक तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आई हैं, साथ ही साथ जो यूएस के

0: ट्रेजरी यील्ड्स हैं या बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी थोड़ा घटा है हल्का सा। तो वो दोनों कारण है, क्योंकि गोल्ड को ये माना जाता है कि इसमें कोई आपको रोज़ रोज़ कोई इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी अभी भी बड़े पैमाने पर गोल्ड जमा कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड बनी रहेगी।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, मेरे और गौरा के हम दोनों के ही तमाम सवालों के जवाब
0: आप
1: देने
0: दोनों
1: के
0: को भी
1: लिए।
0: धन्यवाद।
2: थैंक यू सिद्धार्थ। बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज एंड ऑन पॉजिटिव नोट। सेंसेक्स राइजेस ओवर 150 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,600, आरबीआई लीव्स रेपो रेट अनचेंज्ड, रेजेस करंट फिस्कल ईयर ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.7%, trims inflation projection to 5%, and global crude oil prices rise. That's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। पहला गीत हमने लिया है फिल्म असली नकली से, आइए सुनें।

फिल्म श्री 420 का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश मन्ना डे की आवाजों में। अगला गीत हमने लिया है फिल्म मदर इंडिया से, लता मंगेशकर की आवाज में, आइए सुनें।

फिल्म साहिब बीवी और गुलाम का ये गीत आपने सुना गीता दत्त की आवाज में। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए फिल्म आया सावन झूमके से, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अंजू आ गई है स्टूडियो में आगे का कार्यक्रम लेकर। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी

0: सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई, विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा को सभी के लिए बेहतर और सुलभ बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी विचार विमर्श किया गया। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कल रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई। इससे ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं। डॉक्टर राज्य सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें होम्योपैथी डॉक्टरों को एक विशेष प्रशिक्षण के बाद एलोपैथी दवाएं लिखने की अनुमति देने का प्रावधान है। सेंट्रल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर अथर्व शिंदे ने कहा कि सरकार से बातचीत नहीं होने पर 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कल लैंडमाइन विस्फोट में सेना के दो जवान घायल हो गए। ये घटना मेंढर सेक्टर के कांगा गली इलाके में हुई जहां सेना के जवान लैंडमाइन को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान विस्फोट हो गया। घायल जवानों को तुरंत सेना के अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित सात भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसिंह सिंह, रक्षिता श्रीरामराज, अश्मिता चालीहा और श्रेयांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर और मिक्स डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी।
4: The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion.
3: The Lok Sabha has passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India.

दोस्तों, समय हुआ है 12:11 और ये हुए 13 सेकंड। मैं हूँ आपके साथ अंजू, कार्यक्रम लेकर आई हूँ निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करती हूँ कि ये सफ़र हमारा बहुत सुंदर रहेगा। तो चलिए शुरुआत करती हूँ हमेशा की तरह कुछ अल्फाज के साथ। ये सावन की फुहार और तुम्हारी मीठी सी बातें, ये सावन की फुहार और तुम्हारी मीठी सी बातें लगता है सदियों बाद आई हैं, ऐसी हसीन रातें।

सच तो है कि कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है सुनिए। कहता है कि बूंदे तो गिर रही हैं लगातार मेरे आंगन में, बूंदे तो गिर रही हैं लगातार मेरे आंगन में, पर एक तुम्हारी कमी खल रही है इस सावन में।

मांग लूं खुदा से या खुद को तुम्हारे नाम कर दूं, मांग लूं खुदा से तुम्हें या खुद को तुम्हारे नाम कर दूं, मेरे इस नादान दिल पर पूरा हक, मैं चाहती हूं तुम्हारे नाम कर दूं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों, समय हुआ है 12:28 और 53 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा और मैं आपके साथ अंजू।

शायद तुम्हें नहीं पता कि बिना कुछ कहे वो सब कुछ कह जाती हैं, कि बिना कुछ कहे ही वो सब कुछ कह जाती हैं। तेरी आंखें ही तो हैं जो मेरे दिल में रह जाती हैं।

क्या करूं कि तुम इस दिल की धड़कन में हमेशा बनकर रहते हो, क्या करूं कि तुम इस दिल की धड़कन में बनकर रहते हो, मेरी हर सोच मेरी हर बात में सिर्फ तुम ही रहते हो।

तुम देखना एक दिन की किस्मत के पन्नों पर खुदा खुद ये पैगाम लिखेगा, तुम्हें देखना एक दिन कि किस्मत के पन्नों पर खुदा खुद ये पैगाम लिखेगा, एक दिन वो हमारी मोहब्बत का मुकम्मल अंजाम लिखेगा।

लोग बदलते होंगे बदलते मौसम की तरह यहाँ, लोग बदलते होंगे बदलते मौसम की तरह यहाँ, पर मुझे भरोसा है तुझ पर कि मैं हूँ तेरी जमीन और तू है मेरा आसमान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित

0: पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डी फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक कल ताशकंद में हुई। बैठक में दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, रक्षा शिक्षा, क्षमता निर्माण और रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सुखरोव जोन सोजिक जोनोविच सिरोजोव ने की। दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों और सैन्य तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अंतर्गत दोनों देशों में विशेष प्रशिक्षण और अभ्यास आयोजित किए जाएंगे जिससे सैनिक एक दूसरे के अनुभवों और बेहतर रणनीतियों को साझा कर सकेंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ताशकंद स्थित सैन्य सुरक्षा और रक्षा विश्वविद्यालय का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बड़ी क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। नेटफ्लिक्स इंडिया ने बताया कि बैठक में भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच पर ले जाने की साझा सोच पर बातचीत हुई। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में ओडिशा का सामना पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से, ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया। वहीं झारखंड ने उत्तर प्रदेश को शूटआउट में हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is a need of the hour and a timely reform. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. The Lok Sabha has passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers, books and to align it with the contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be

दोस्तों समय हुआ है 1:10, समय हुआ है 1:11:03। मैं हूं अंजू, एक बार फिर से आपके साथ कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अभी तो दिल की बात शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो दिल की बात शुरू भी नहीं हुई है। रात रात को यहीं रोक लो, क्योंकि अभी तो मुलाकात शुरू भी नहीं हुई है।

बिना कुछ कहे ही जो सब कुछ बयां कर देती है, बिना कुछ कहे ही जो सब कुछ बयां कर देती है, तेरी इन कातिल निगाहों को मेरा 100 बार सलाम है।

वैसे तो लाख चेहरे हैं इस दुनिया की भीड़ में मगर, वैसे तो लाख चेहरे हैं इस दुनिया की भीड़ में मगर, जिस पर ठहर जाए ये नजर, वो इकलौता चेहरा सिर्फ तुम हो।

दुनिया ढूंढती है खुदा को पत्थर की मूरत में, दुनिया ढूंढती है खुदा को पत्थर की मूरत में, मैंने तो अपने दिल के मंदिर में सिर्फ और सिर्फ तेरी तस्वीर को ही बसाया है।

तेरी बाहों के घेरे में आकर दुनिया भूल ही जाते हैं हम। तेरी बाहों के घेरे में आकर बस ये दुनिया भूल ही जाते हैं हम। यही तमन्ना है कि ये वक्त यहीं रुक जाए।

एक महफिल सी सज गई है अब मेरे वीरान दिल में, एक महफिल सी सज गई है अब मेरे वीरान से दिल में, जब से आपने मोहब्बत की रोशनी को बिखेरा है आपने।

लाख संभल कर चलते हैं लोग इस जमाने में मगर, लाख संभल कर चलते हैं लोग इस जमाने में मगर, जिसने भी तुझको देखा एक बार वो अपने सुध बुध खो बैठा।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 2:10 पर रात सुर में ही लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने

0: वाला कर्मी नहीं पाया गया। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,098 हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की पहचान की गई थी। उन्होंने कहा कि सभी चिन्हित लोगों को 40,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि दी गई है। मंत्री ने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दे रही है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन पवन हंस लिमिटेड ने नई दिल्ली में नॉर्वे की कंपनी नोएमी एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह सहयोग देश में स्वदेशी क्षमता को मजबूत करने और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। भारतीय रेल ने कंटेनर ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटरों के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अब कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर एक ही अखिल भारतीय लाइसेंस के अंतर्गत भारतीय रेल के सभी मार्गों पर कंटेनर ट्रेन चला सकेंगे। अलग अलग मार्गों के लिए अलग अनुमति और शुल्क की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि नए नियमों से प्रक्रिया आसान होगी, निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रेल के जरिए माल ढुलाई बढ़ेगी। इससे सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा, ईंधन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बहुत क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल में ओडिशा का सामना पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and timely reform. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. The Lok Sabha has passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. August 5, 2026 marked 7 years since the historic abrogation of the Articles 370 and 35A. On this day, in 2019, a landmark decision marked the beginning of a new chapter in the journey of Jammu and Kashmir and Ladakh. Prime Minister

दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। समय हुआ है 2:11 और 12 सेकंड। कार्यक्रम लेकर आई हूँ रात सुहानी। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। रहेगा ये सफर बहुत ही खूबसूरत, तो क्यों ना शुरुआत कुछ अल्फाज के साथ की जाए। चाहकर भी हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं, चाहकर भी हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब भी तुम पास आते हो हम और मदहोश हो जाते हैं।

जो कभी मिट ना सके वो हसीन सा एहसास हो तुम, जो कभी मिट ना सके वो हसीन सा एहसास हो तुम। तुम्ही के पता कि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत का खूबसूरत आगाज हो तुम।

ना कोई ख्वाहिश ना कोई तमन्ना, ना कोई ख्वाहिश ना कोई तमन्ना है अब इस दिल को। मेरी इबादत, मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुम हो।

जमाने भर को पसंद होंगी सावन की ये पहली बारिश, जमाने भर को पसंद होगी ये सावन की ये पहली बारिश, पर तेरे बिना इस दिल के लिए सिर्फ ये एक आजमाइश है।

अजनबी थे वो, मगर पहली नजर में कुछ ऐसा कमाल हुआ। अजनबी थे वो, मगर पहली नजर में कुछ ऐसा कमाल हुआ कि निगाहें क्या मिली उनसे, दिल का संभलना ही मुश्किल हो गया।

लाख पहरे लगा ले ये जमाना हमारे जज्बातों पर मगर, लाख पहरे लगा ले ये जमाना हमारे जज्बातों पर मगर, दुनिया से बचकर तेरी निगाहें, दुनिया से बचकर तेरी निगाहों का मेरी निगाहों से मिलना लाजवाब होता है।

आईना भी देखता है जब तुम्हें तो खुद पर गुमान करता है। आईना भी देखता है जब तुम्हें तो खुद पर गुमान करता है। तेरी मासूमियत के आगे तो चांद भी झुककर तुझे सलाम करता है।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। भारतीय स्टूडियो में आ चुके हैं। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 3:10 पर। भारती रहेंगे आपके साथ कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी को नहीं पाया गया है। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,000 से अधिक ऐसे कर्मियों की पहचान की गई थी। मंत्री ने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दे रही है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बहुत

0: क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिसरी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजिता हेरात और विदेश सचिव अरुणे रणराजा से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के विकास के लिए उसकी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग कर रहा है। नई दिल्ली में अफ्रीका दिवस के अवसर पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत को गर्व है कि वो अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश भागीदारों में से एक है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार 93 अरब डॉलर रहा। डॉ जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के प्रति भारत की नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में युगांडा की संसद में बताए गए 10 सिद्धांतों से प्रेरित है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन पवन हंस लिमिटेड ने नई दिल्ली में नॉर्वे की कंपनी नोएमी एयरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह सहयोग देश में स्वदेशी क्षमता को मजबूत करने और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में नई तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल में ओडिशा का सामना पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तमिलनाडु के कोयंबटूर में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से, ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and a timely reform. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. The Lok Sabha has passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. August 5, 2026 marked 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 35A. On this day in 2019, a landmark decision marked the beginning of a new chapter in the journey of Jammu and Kashmir and Ladakh. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said constitutional changes made in 2019 ushered in development and empowerment in the two union territories. In a social media post, Mr. Modi highlighted that infrastructure has expanded, opportunities in areas such as education, healthcare and entrepreneurship, and sports have grown in both Jammu and Kashmir and Ladakh. On the 7th anniversary of the abrogation of Article 370, Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal, while talking to media, said the historic step accelerated development in Jammu and Kashmir.
2: Article 370 and Article 35A were discriminatory and unjust provisions which were abolished by Prime Minister Narendra Modi in 2019. Since then,

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, लेकिन आपका स्वागत करती हूं मैं कार्यक्रम हमराही में। जी हां, और एक प्यारे से गीत के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, और गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

कुछ रिश्ते वक्त की किताब में नहीं, दिल की धड़कनों में लिखे जाते हैं। सच्ची मोहब्बत वही है जो दूरियों में भी अपनेपन की खुशबू बिखेरती है।

कभी कभी एक नजर ही पूरी कहानी कह जाती है। जब आंखों में प्यार उतर आए तो शब्द भी मुस्कुराने लगते हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मोहब्बत की राह में अलहड़पन भी एक खूबसूरत एहसास होता है जो दिल को बेवजह मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। वही तो प्यार की सबसे प्यारी अदा है।

जब किसी की खुशी अपनी खुशी बन जाए और उसकी मुस्कान में अपनी दुनिया नजर आए, तब समझिए कि प्यार अपनी सबसे खूबसूरत मंजिल पर पहुंच चुका है।

प्यार कोई जीत हार का खेल नहीं, ये तो दिलों का खूबसूरत सफर है, जहां अहंकार नहीं सिर्फ अपनापन और विश्वास ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जल्द मुलाकात होगी 4:10 पर। जी हाँ, प्रोग्राम अरुणिमा में। तब तक के लिए मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति। आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मैं आपसे ले रही हूँ विदा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाला कर्मी नहीं पाया गया। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,000 से अधिक ऐसे कर्मियों की पहचान की गई थी। मंत्री ने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दे रही है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बहुत क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, और समय हो गया है 4:11 और 14 सेकेंड। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम अरुणिमा की अभिमान फिल्म के गीत के साथ। लता मंगेशकर ने गीत को अपनी आवाज़ दी है, और संगीतकार SG बर्मन, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म जुर्म से कुमार सानू और साधना सरकम की आवाज में, संगीतकार राजेश रोशन, गीतकार इंदेवर।

अभी आपने गीत सुना फिल्म कस्मे वादे से किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, संगीतकार आरटी बर्मन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है अरुणिमा। आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को और सुनते हैं अगला गीत फिल्म आया सावन झूम के से मोहम्मद रफी की आवाज़ में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म धरती से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार राजेंद्र कृष्णन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म क्रांति से लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार संतोष आनंद।

कार्यक्रम अगला गीत सुनते हैं फिल्म साजन का घर से साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज में, संगीतकार नतीम श्रवण, गीतकार समीर।

और अब जो गीत है वो है कार्यक्रम का आखिरी गीत। गीत है फिल्म सत्य पे सत्ता से किशोर कुमार, भूपेंद्र, सपन चक्रवर्ती और आरटी बर्मन की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं ये गीत और उसके बाद, वैसे तो समय कह ही रहा है कि आपसे अनुमति ले ली जाए, लेकिन छोड़ के जा रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। जल्द मुलाकात होगी 5:10 पर कार्यक्रम भोर सुहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया। सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाला कर्मी नहीं पाया गया। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,000 से अधिक ऐसे कर्मियों की पहचान की गई थी। उन्होंने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों का कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। नीति आयोग ने कल रीमैनेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 नामक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में देखभाल करने वाले कर्मियों को सशक्त बनाने और देश में एक बेहतर देखभाल व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य भारत को कुशल देखभाल कर्मियों के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि देखभाल केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं व्यापक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन पवनहंस लिमिटेड PHL ने नई दिल्ली में नॉर्वे स्थित नोएमी एयरोस्पेस के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन की अध्यक्षता नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि यह सहयोग नागरिक उड्डयन क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और उभरती प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए भारत की व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की काफी क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरांटोस से मुलाकात की। पुदुचेरी सरकार ने अंततः अपने मंत्रिपरिषद को विभागों का आवंटन कर दिया है। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने आवंटन को मंजूरी दी और मुख्यमंत्री एन रंगासामी की उपराज्यपाल के साथ हुई बैठक के बाद सरकारी राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी की गई। विभागों के आवंटन में देरी को लेकर हाल के हफ्तों में विपक्षी दलों ने आलोचना की थी। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ।

सुख में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सच्ची पहचान वही है जो कठिन समय में भी आपका हाथ थामे रहे। आइए आज ऐसे इंसान बने जो हर परिस्थिति में अपनेपन का साथ निभाए।

कोयल गाती है क्योंकि उसकी वाणी में मधुरता है। उसी तरह हमारी वाणी में भी प्रेम, सम्मान और सद्भाव से भरी हो, ताकि जहां भी जाएं खुशियों की गूंज छोड़ जाएं।